आदौ मुख्याः वार्ताः। केवडियारय्याः एकता नगरे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया द्विसप्ततितम राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारैः कलाविदः समादृताः। नवमन्ताराष्ट्रिय जल सप्ताहस्य समुद्घाटनम्। जलप्रबन्धन जटिलता निरसनाय सर्व

0: कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाया और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाया। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे, हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे, तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अद्य नवदिल्ल्यां अखिल भारतीय प्रबंधन संघस्य त्रिपञ्चाशत्तमाधिवेशने प्राख्यापयत् यत् भारतस्य अग्रिम संवृद्धिः गुणवत्ता प्रतिष्ठायाम् एव संभवेत्, सा सर्व उत्पादनशालाभ्यः प्रबंधनमण्डलेभ्यश्च उच्च मानदंड धारणम् अन्वशाषत्। वित्तमंत्री सीतारामन समदीदृशत् यत् वैश्विक व्यापार श्रृंखलायां अनिश्चिततायां सत्यां त्रिपञ्चाशत् अधः मंदकाले अपि भारतीय अर्थव्यवस्था 8% समीपम् अबाधित गत्या संवर्धते। कुआलालंपुरस्थेन भारतीय उच्चायोगेन पर्यटन वीजा पत्रेण मलेशिया देशं प्रति गच्छन्तः भारतीय नागरिकाः तत्र कार्यं न स्वीकर्तुं प्रबोधिताः। एकस्मिन् परामर्शे उच्च आयोगः अवदत् यत् 30 दिवसात्मकस्य वीजा मुक्त सौकर्यस्य उपयोगेन कार्यं प्राप्तुं मलेशिया देशं प्रति आगच्छतां भारतीय नागरिकाणां संख्या वर्धिता अस्ति। बहवः भारतीयाः नागरिकाः मिथ्या कार्य प्रतिज्ञायुक्तैः अविवेकी अभिकर्तृभिः भ्रमिताः भवन्ति, येन अतिवासः अवैध स्थितिः शोषणम् विधिसम्मत कार्याचरणं च भवन्ति। उच्च आयोगः अवदत् यत् वास्तविक पर्यटकाः वैधं सत्यापनीयं च प्रलेखम् अवश्यं वहन्तु, यथा प्रत्यागमन यात्रानुपति चीटिकायाः पुष्टिः, आवास रक्षणम्, आगमन दिनांकस्य दिनत्रयानन्तरं मलेशियन डिजिटल आगमन पत्रस्य ऑनलाइन प्रस्तुतीकरणम्, षट् मासस्य वैधतायुत पासपोर्ट च। भारतीय वायुसेना दलेन जापान वायु आत्म रक्षा दलेन च अद्य जोधपुर वायुसेना स्थले द्वैपाक्षिक वायु अभ्यासः वीर गार्डियन 20-26 इति सम्पन्नः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन दिवसे तटीय आंध्र प्रदेशे ओडिशायां विभिन्नेषु स्थानेषु अत्यधिक वृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां अद्य सनो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे वृष्ट्या बाधितायां पंचक्षेप चक्रीय 20-20 अंतरराष्ट्रीय क्रीडायां आदित्य जापान देशः द्वाभ्यां धावनांकाभ्यां पराजितः। एशियाई क्रीडासु भारतीय पुरुष बैडमिंटन दलेन अद्य जापान देशम् आयोजिते उपांत्य पूर्वचक्रे आयोजक जापान देशम् पराभूय भारताय पदकम् प्रासाधि। इति वार्ताः।
2: इपुल प्रादेशिक वार्ताकल केल्काम।
3: The early years of life determine how much a child will develop mentally and how far they will progress in life. At our Anganwadis, children grow and develop with proper nutrition, plenty of love, fresh hot meals and learning through play. At the same time, under the Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, the eligible financial assistance is being deposited directly into mothers' bank accounts, ensuring safe motherhood. With the resolve of Hamari Anganwadi, Hamari Zimmedari, the 9th Rashtriya Poshan Maah is being celebrated from 9th September 2026 to 8th October 2026.
4: Desh ke har gareeb, har vyakti tak poshan pahunchana bhi sarkar ki prathmikta hai.
3: Connect with your nearest Anganwadi today, because Hamari Anganwadi hai, Hamari Zimmedari.
5: ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബിന്ദു. പ്രധാന വാർത്തകൾ. 72nd ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമു വിതരണം ചെയ്തു. മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം മമ്മൂട്ടി.